0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: Soundcheck. Studio time. Studio time.
4: It's 7 a.m. Bihan ko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोनू दूध नगर पालिका 5 सोनू खुम्बू

आत्मीयता सबले बिर्सिसक्यो क्या आजकल आत्मीयता यूनिटी कार्पेट नै हो विगत तीन दशकदेखिको सुन्दर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनुहोला यति कार्पेट कार्पेटको शिर्षा

0: बाबू मैं मेरे तो हाथ खुट्टा अनुनासा झमझम करनाशले हंगाम बनाए मेरे के एक बार को जिंदगी दुख दुख में बिता पर्ने उपचार कता कराने हो
1: दीदी मैं गैस्ट्रिक भर तनाव थाके हिरान भिंदा नलागे रात भर जागरण जस्ते बस् तर यह सब रोग उपचार आमजी औषधालय में हम अरे भर उपचार कराने भाग आमजी औषधालय तीर हिड़क नहीं मत दीदी और समय जाऊ
2: यहाँ नसा च्यापिएको हड्डी खिएको हात खुट्टा झमझमाउने पुरानो बाथरोग दम खोकी
3: गाउँघरमा छायो हजुर सोलु एफएमको
4: तरंग सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
5: इट्स 1 PM दिउँसोको 1 बजे
6: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु
7: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सोलु एफएम सोलु एफएम मा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न

न्यू स्टार कलर लैब तथा सोलामाई ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस सुनोद कुंज नगर पालिक पांच सलेरी सुन खुम्बू विगत देखि ग्राहक विश्वास जीती आयो न्यू स्टार कलर लैब तथा सोलामाई ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस थप सेवाहर का साथ में सब संग हमारा सेवाहर प्रेस संबंधी संपूर्ण काम किताब कैलेंडर ब्रोशर बिल लेटर पैड रजिस्टर विवाह कार्ड फ्लेक्स प्रिंट होर्डिंग बोर्ड फोटो जर्सी प्रिंट गाड़ी तथा बाइक को नंबर प्लेट छपाई गई साथ ही स्टेशनरी का सामान होलसेल मूल्य में पाई दिव्या कंपनी को एलईडी बल्ब पावर सकेट पैनल लाइट ट्यूब लाइट प्रीमियर कंपनी को सब खाल का तार पाई सीजी कंपनी का संपूर्ण सामान कंपनी के मूल्य में बिक्री वितरण गरिदै आएको छ सीजी कंपनी को फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मशीन माइक्रोवन नुहाउने गीजर गैस चूलो भैक्यूम तथा किचन को संपूर्ण सामान उपलब्ध एलईडी टीवी कंप्यूटर लैपटप कलर प्रिंटर फोटोकॉपी मशीन झ्याल ढोका में लगने मोटो तथा पातलो रंगीन सीसा फोटो फ्रेम होलसेल मूल्य में बिक्री वितरण गरिन्छ हार्डवेयर का संपूर्ण सामान काटी कब्जा छेस्किनी ताल्चा वाल मिक्सर नुहाउने सर्वर बेसिन धारा कमोड पेंट सेट पीवीसी पाइप सीपीवीसी पाइप पाइन का साथ ही फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मेसिन कंपनी के मूल्य में पाइन्छ अनि यी सबै मरम्मत पनि गरिन्छ र ग्यास वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग साथ ही बाइक

0: प्रोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साउन्डचेक प्रोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: It's 2 p.m. News support B-Vajur.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका पांच सोलु खुम्बु
2: आदरणीय श्रोता वृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ

0: पालो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: Soundcheck. Surya Sun. It's studio time.
2: It's 4 PM. And I am the coach of the
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलह दुकान नगर पालिका 5 सोलह कुंभ

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: साउन्डचेक सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: 5 PM साँझको 5 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुधकुंड नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: अध्यक्ष अर्जुन बहादुर भट्टराज, जिल्ला खेलकुद विकास समिति सोलुखुम्बु। मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौं, सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौं। मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौं। मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौं। प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत बनाऊ। जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं। वन संरक्षण र वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ। ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ़ाऊ। वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ। वातावरण संरक्षण गरौं, जीवन रक्षा गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Sony FM. It's studio time.
0: It's 7 p.m. Start the call, start with it.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुखुम्बु नगर पालिका 5 सोलुखुम्बु